रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए। करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करन हार इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्राप्त होए। जो किशकिनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हु कै संग। बुझा देह क्या करे विवेक अपहे कापे अनेक। मर न मनसा वह न जाए नानक सदी ही रह समाए। आप उपदेशा समझे आप आपे रचया सबका साथ। आप किन्नो अपन विस्तार सबका जुसका हो करने हार। उससे भिन्न कहो कि छोए थान धनंतरे क्या सोए अपने चलत आप करने हार। कौतक करे रंग अपार मन में अपन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सात सात सात सात प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी। सच सच सच सब कीना कोट मध्य किने बिरले चीना। भला भला भरा तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका बहर बहरे अवतार अष्टपति। संत के दुख नार जा कटै संत के दुखन जमते नहीं छुटै। संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुख नरक मह पाए। संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सोभा ते हीन। संत के तक रख्या न कोय संत के दुख धान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरै। संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्ब जोन पाए संत के दुखन तिरगत जोन किरमाए। संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै संत के दुखन सब को छलै। संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए। संत का दुख संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे तो पीगत पाहे। संत का निंदक महात ताई संत का निंदक खिंटे करना पाए। संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक रायते हीन संत का निंदक दुखी आर दीन। संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग। संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावता उसका भी होए मोख। संत का दुख सदा पवित संत का दुख किसा का नहीं मेत। संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए। संत का दुखी महाअहंकारी संत का दुख सदा बेकार। संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते डरे। संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावता ले मिलाए। संत का दुखी आद बीजते टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुंचे। संत का दुखी को ध्यान ब्रह्माई है संत का दुखी जड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किस ना है अपन बीजा पे ही खा है। संत के दुखी को अवरन राखन हार नानक संत भावे तलै उबार। संत का दुखी यों बिल लाए जो जाल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पाव कीर्तन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पाया नानक जो तिस भावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजन आसा संत का दुखी चल निराशा। संत का दुख न दृष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होए। पया कीर्तना मेटा कोय नानक जाने सच्चा सोए। साब घट के हो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार। प्राप की उसत करो दिन रात तिसे ते आवो सास किरास। साब कुछ वरता इसका किया जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार। जिसनों कृपा करे तसापन नाम दे बडभागी नानक जन से श्लोक। तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय। कास हर मन रखो नानक दुख भरम पाओ जाए अष्टपदी।

जिसका हुक्म भूल सुख होए, जिसका नाम रखंड परोए, सिमर सिमर सिमर प्राप सोए, नानक बिघन ना लागे कोई, सतमान में कर निरंकार, कर मन मेरे साथ व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सवेला कर ले जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, सार संग मन सह सब संग, चरण चलो मार्ग को बंद, मिटे पाप जपी हर बिंद, कार हर कर्म श्रवण हर कथा, अर्दर गया नानक उजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, चेतन मंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जन होते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत की ओ सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक दिने निरंजन जान्या, गुर प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सार संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्योहार जन रहत, आनंदन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी घटी है जाम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे ना लाग है दुख, जिसको हर पाप मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सात ऐसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बूझिया, जब देखो तब साब किस मूल, नानक सो सुखम सोई अस्तूल, नै किस जन्म नै किस मरे।

ताजब मान लिहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत संचाल अवरत्याप घिया जंजाल धन धन कह सब कोय मुखुजल हर दर गै सोए वा पार बिरला वा पार नानक ताकै सतबलिहार चरण साध के तो है तो भी अरप साधु को अपना जियो साधु की धूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान सार सेवा वट भागी पाइय सार संघर कीर्तन गाइय आने के बिघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाख है उट गही संत है दरियाया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवता दार सर्व सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे साब के जिसका हो करना जोग तिस बिन दूसर हो आना होग जाप जान सदा सदा दिन रानी साब तेज निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभजीत भगत भगत सुनी है तेह लोए जाके हृदय को होए साच करनी सचता की रहत साच हृदय सात मुख कहत साची दृष्ट साचा कार सच वर्ता साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग के क्षेत्र गुण ते प्राप्त भिन्न से बुझाए नानका जिस हो वै सुपर सान अष्टपति अविनाशी ब्राह्मण में राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सोजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल भगसंद सा तेरे की चरनी पाओ नानक मन ह्यो नराओ मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाना हो रण द्रूप मंगल सद जाका सर्व थोक सुनिए कर ताका राज में राज जोग में जोगी ताप में तिसर ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाए।

रहे हो पूरन सब ठाए, नाना बिदकर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाए, साब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगला आकार, नाम के धारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सोजन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जागी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जागी रचना सत मूल सत सत उत्पात, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बजाय तिस सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाकर दे प्रवेश, सत नित बुझे जे कोय, नाम जपत तागीगत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितगात, जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार, करते की मित ना जाना किया, नानक जो तिस भावै सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राजन रहे, गुर के भजन पदार्थ लहे, ओ दाते दुख अटनहार, जाके संग तरे संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन के संग एक लिबलागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे, श्लोक आदि सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच अष्टपदी, चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यानहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत च सुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत रूप हृदय जन मान्या, करन कराम दर मूल पछान्या, जागर दे विश्वास प्रभ आया, तत ज्ञान दिस मन प्रगटाया, पैते निरपोहे पसाना, जिस देव जत समाए समाना, बस्त माहिले बस्त कड़ाई, ताक भिन्न ना कहना जाए, बुझा बुझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाना संग, प्रभु का सेवक नाम का रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राख्या निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धार, नानक सो सेवक सास सास मार, अपने जन का पर्दा ढक, अपने सेवक की सर पर राख, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राख है, ताकि गतमित कोई न लाख है, प्राप के सेवक को कौन आप पहुंचे, प्राप के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी में कल राख है, भस्म करे लश्कर कोट लाख है, जिसका सास न काट दे आप, ताको राख देकर हाथ, मानस यतन करत भोपांत, तिसके गर्त बिरथे जात, मारन राख वरना कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभा लख बिडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिया, पी अमृत हो मन तंत्र पिया, नाम रतंजन गुरमुख पाया, तिसके अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जन त्रिपताने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन का सदकाम, बोलो जस जह बाजन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात, करे भगत आत्म क्या चाहे, प्रभ अपने से रहे समाये, जो हुआ होवत सो जान, प्रभ अपने का हुक्म बचान, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक ना जानो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक थे जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पुछाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसकी सरन सर्व सुख पाव है, तिसका दर्श पाप मिटाव है, और सयानम सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग,
ਆਵਨ ਜਾਨ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਤ ਪੈਰਾ। ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਰੈ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤਿਹਾਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਟ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਾਲਤ ਬਾਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ। ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਪਹਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜਨ, ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਪਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ, ਸੁਨਕਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੰਪਤੀਆਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖਿਆ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ।

अंधकार दीपक पर गासे नानक परम मोह दुख तैते नासे तप तमाय ठा डबर त्याई आनंद भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेशे भाव चुका निर्भोय बसे सकल ब्याद मन ते खै नसे जिसका साधन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुण या सरगुन पियो ही।

तात विचार कह जन साचा जन्म मरिया सो काचो काचा आवा गवन मटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव। इओ रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग ना चालस तेरा तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सोतमीत कुटाम्बर बनता इनते कह हो तुम कौन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कह हो कौन छुटकार आशा सीरा था सवारी झूठा डंफ झूठ पा सारी जिन दिए तिस बुझा ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नव सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के सकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिन्हां प्यारियां

जैसे जलते बुद्ध बुदा उपजे बिनसै नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत जग रचना सब चलना है ना जी जग दी रचना झूठ है जग रचना सब झूठ है

मैं तरना नहीं जानता, संसार समुंदर है, मैं तरना नहीं जानता, कोई बेड़ी भी नहीं है। ते गरीब निवाज तुलहा, तुलहा हुंदा जिवें लकड़ां कट्ठियां कर लिया, पराली कट्ठी कर ली, एक बहुत वड्डा सारा लकड़ां दा कट्ठ जिहा कर ला, डुबदियां नहीं, कट्ठियां करके कहिंदा जी इहदे नाल पार हो जावांगा। मेरे कोल बेड़ी भी नहीं है, मैनू तरना भी नहीं आउंदा, मेरे कोल तुलहा नहीं भी है, हम बूढ़स असीं डुबदे जा रहे हां, जिवें प्रतक समुंदर विच कोई डुबदा है। गरीब निवाज तार ले हे तारण राया, हे गरीब निवाज मैनू संसार समुंदर तो तार दिओ।

गुरु प्यारी साध संगत, आओ सारे कलगी धर पातशाह दे चरणा विच अपने बिरतियां टिका लईए, सतगुर दे दर्शन करिए। गुरु की संगत विच आप रब वर्गियां संगतां गुरु दरबार विच जुड़ बैठे हो, बहुत खुशी हुंदी है जदों आप वर्गियां संगतां रब नाल जुड़ के कीर्तन सरवण करदे हो, गुरु नाल जुड़ के बैठदे हो। दास नूं कल गुरमुख सज्जना ने हुक्म कीता कि तीन वीकां तुहाडियां बीत गईयां ते कलगीधर पातशाह दा प्रसंग नहीं सुनाया। आयो तुसीं दरबार पौंटा साहब कलगीधर पातशाह दे दरबार विचों, पर मैं बेनती करां, यह है तो मेरी वड्डी भोली है, गलती है, गुनाह है, पर संगत बख्शन योग है ते आप ही असीस बख्श के सतगुरु दे चरणा च अरदास करके सेवा करवा लैनी। आओ सारे सतगुरु कलगीधर पातशाह दे उचारण कीते हुए बचन सरवण करिए, नाले गायन करिए, ते नाले दो चार मिनट का मैं तुहानू कलगीधर पातशाह दा एक बचन भी सांझा करांगा जिहड़ा गुरु दरबार विचों सतगुरु दे दर तों लोकी झोलियां भर के जांदे हन, भंडारे भर के जांदे हन। सो आओ सारे करो कृपा।

पारा आपे दाद करे दातार देवन हारे को जयकार नदर करे सतगुरु में लाए नानक हृदय नाम वसाए पैरो महला तीजा नामे उदरे सब जितने लो गुरु।

निज कर वसे सहज स्वपाए गुरमुख ना वसे मन आए आपे वेखे वेखनहार नानक नाम रखोर तार भैरो महला तीजा कलजुग में राम नाम तार बिन नावे माथे पावे चार राम नाम दुर्लभ है पाई गुरु प्रसाद वसे मन आई राव राम नाम जन पाल सोए पूरे गुरते प्राप्त होए हर का पाणा मन से जन परवान गुर के शब्द नाम निशान सो सेवै जो कल रह तार नान गुरमुख नाम प्यार भैरो महला तीजा

0: रहो। तन मन खोज कर मैं पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुरु तय होए, राम नाम रब रया तय लोए। कलयुग में हर जियो एक होर रुत न काई, नानक गुरमुख हृदय राम नाम लेहो जमाई।
1: ओंकार सतगुर प्रसाद, मन दुबदा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जल अधकाई, मर मर जमे ठोर न पावे, बिरता जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बजाई, हामे रोग जग दबाया, बिन शब्द रोग न जाई राव। सिमरत शास्त्र पढ़े मन केते, बिन शब्द सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग आपे, ममता सुरत गवाई।

अखन ब्रह्म वेच परचारिंग सुपने दे चरण तिथ काय का जी गोचर वर्णा सुसरता जो सुतरता ले बार जाता पीतरिया गगल मंडल में लश्कर करे सो सुल्तान शतर सिर तरे जोगी।

te kaho kavana phala paave jeme te ko vishta mero lai tamerta ka ka kat jahai kait kabir ho ko bukar samya dekh sagat gavar duje bhai bahut kar gale ram bhagat hai sada sukhale jal mein meen maya ke ved deep patang maya ke shede काम माया कुंचर को व्यापे प्यंग प्रिंग माया मैं खापे माया ऐसी मोनी भाई जेते जेते देह काई राहो पंखी मेरक माया मेरा ते साकर मखी अधिक संतापे तुरे उठ माया मैं बेला से दचरासी माया मैं खेला छे जती माया के बदा नवे नाडभू सूर्य चंदा तपे तपे सुर माया मैं सूता माया मैं काल अर पंच दूता स्वांस आल माया मेरा तब अंतर चिते अर संगाता माजार गडर लूबरा बिरख मूल माया हमें परा माया अंत तिने विदेव सागर इंद्र अर्तरते कह कबीर जैसे उधर तिस माया तब छोटे जब साधु पाया।

अंजना रह, जब लग सिंह रहे बन माए तब लग बन भूल ही मुना, जब इसर सिंह को काय भूल रही सगले बन राय, ये तो बुढ़ो हारो तेरे गुर प्रसादित पार उतरे, दास कबीर कहे समझाए केवल राम रहो लिबलाए, सतर से सला रह जाके सवा ला पैकाम बरता गे, सेख जो कहे कोट उठा दे शबन कोट जाके खेल गासी, मो गरीब के को गुजरावे मसर दूर महल को बावे रहो, तेती करोड़ी है खेल खाना चौरा सी लख फिरे दीवान, बाबा आदम को कुछ दर्द काई उन वे भेद कन्हेरे पाए, दिल कलान जाके जर्द हुवानी छोड़ कते करे सैतानी, दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया बावे सोई, तुम दाते हम सदा बिकारे देव जवाब होए बजगारे, दास कबीर पदरी पने समाना पेतन जी करा कमहरा माना, सब को ये चल कहत है उहन ना जानो वैकंठ वैकुंठ है कहाँ रहो, आप आपका मर न जानना बात नहीं वैकुंठ बेखाना, जब लग मन वैकुंठ किया तब लग नहीं चरण निवाग, काये कोरना पर बगारा ना जानो वैकुंठ द्वारा, कह कबीर अब कहिए काहे सा संगत वैकुंठ आए, क्यों ले जे गर्भंका पाए दोवर कोटा तेवर काई रहा, पांच बसेद मोहे मत मरसन लाली पर मल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे कहाँ करो रखवाया, काम के बारे दुख सुख दरबानी पापुन दरवाजा, करोड़ प्रधान महाभरतुंदर तय मन मासी राजा, स्वाद सुना टोप ममता को कबोद चुमक मान चढ़ाई, कितना तेर रहे कट पितर यूं कर लियो न जाए, प्रेम प्रीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म गण सहजे पर जली एक चोट से जाया, सासन तो ले लड़ने लगा तोरे तो दरवाजा सासन।

कार जयपुर प्रभु श्री गोपाल खंड मंडल मंडल मंडा त्रियस्थान त्रिया तीन त्रिया खंड अगम गोचर है अभ्यंत पार न पावे कोतर नेतर मान कदले पोहत तूप प्रकाश राज पंकज में लियो निवास द्वार दाले अरंतर मंत जयपुर शिव कमला कांत आर्द उर्द मुख लागो काश सुन मंडल में कर प्रकाश हुआ सूरज नाही चंद आय निरंज करे आनंद सो ब्रह्मांड पिंड सो जान मान सरोव कर स्नान सोहे सो जा को है जाप जा को लिप्त न हो पुण्य हर पाप वर्ण वर्ण काम निशाप अवर न पाइये गुर की थाम करे न टे न आवे न जाए सुन सहद में रहो समय मन मंदे जाने जय कोई जो बोले सो आपे होय ज्योत मंत्र मन अस्त्र करे हा कह कबीर सो प्राणी तरे कोट सूर जाके है प्रकाश मेरे को मह कोट महादेव कबला दुर्गा कोट जाके मर्दन करे ब्रह्मा कोट वेद उचरे जो जा चो तो केवल नाम देव सो नाही काम रहो कोट चंद्र करे चराग सूरज के तेज वह वाख नवग्रह कोट ठांडे दरबार कार तर्म कोट जाके प्रतिहार पवन कोट चौबारे बेरे वासन कोट से बेतरे समुद कोट जाके पानी हार रमावल कोट अठारा भार कोट कमेर परे पंडार कोट लक्ष्मी करे सिंगार कोट को पाप पुन बहरे कोट इंद्र जाके सेवा करे छपन कोट जाके प्रतिहार नगरे नगरे घरते अबार लड़ छोटे वरते बकरार कोट कला खेले गवार कोट जाग जाके दरबार गंधर्व कोट करे जयकार विद्या कोट स्वय गुण कहे तो पार ब्रह्म कांत नहे वावन कोट जाके रोमावली रावण सेना जय ते श्री सहज कोट व कर्त मुरांतर जोधन का मत्या हमान गंधर्व कोट जाके लवे ना तरे आंतर अंतर मन सारे कह कबीर सुन सार गन दे पद मांगो दान पैरो पानी नाम देव जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु

अम्य दृष्टि शुभ करे हरे सब का पाप कमल मल। अम्य दृष्टि शुभ करे हरे सब पाप कमल संग, काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सब बल। सदा सुख मन बसे दुख संसार खोवे, गुर नौ निद जरियाओ जन्म हम काल खतोवे। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशाओ, जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो। दर्शन प्यासी दिन से रात चितवो अंदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत।

सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाहे दर्शन परसिया गुरु ते गुरु के जन्म मरण दुख जाहे

अनेक अनेक अग्नि बुझे कोट भाव दरगह निसिजे। शूर्स नाही उप्याल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साथ जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मटावे हर हर नाम हृदय सतगावे जे को अपनी शोभा लोरे साथ संगे ओमे शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे साथ जना की सरनी परे जिस जन को प्रदर्श प्यासा नानक ताके बल बल जैसा सगल पुरख में पुरख प्रधान साथ संग जाका मिटे अभिमान। आप उसको जो जाने नीचा सो गनिये सबते ऊंचा जाका मनोए सगल किरीना हर नाम दिन कर कर चीना। माने अपने ते बुरा मटाना पेखे सगल सिष्ट साजना सुख दुख जन संदिष्टेता नानक पाप पुन्य लेपा निर धन को धन तेरो नाउन थावे को नाउ तेरा थाउ। निमाने को प्रभ तेरो महान सगल कटांको देवो दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटांके अंतर जामी अपनी गत में जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते। तुमरे उस्त तुम ते हो नानक अवन जान सको सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया।

अपनी प्रती आपी खोवे बोर उसका विश्वास न होवे जिसकी भक्ति जागे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौकन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरबर होवत जानन हेत बिरकी छाया सिउ रंग लावे ओ बिनसे ओ मन बजदावे जो

मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने, मिथ्यास पर धर्म को हिरे, मिथ्या नेत्र पेख बरतरिया रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे,

जय प्रसाद सुसे सुई जय मन आठ पैर धागा जस गवि जय जय प्रसाद सब को माने मुक्ता को जस रसन मखाने जय प्रसाद तिर रहता धर्म मन सदा ध्याय केवल पार रम प्रभ जी जपत दर गए महान पावे नानक बसे ती कर जावे जय प्रसाद रो कंचन देहि लिव लावो तिस राम स्नेहि जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख भावे हर जस गाय जय प्रसाद तेरे सुन सिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रदा कह जय प्रसाद तुझको नाम पहुँचे मन साथ साथ सिमरु प्रभु उचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक दागी भगत करे जय प्रसाद भूखन बहरी जय मन ते सिमरत क्यों आरस की जय जय प्रसाद अस्वस्थ सवारी मंत प्रभु को कबू नाम सारी जय प्रसाद भाग मिलक तना राग प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठ बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक लखे आऊआ नानक तेरी रखे जय प्रसाद करे पुन बो दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू चार व्यवहारी तिस पर को सा चितारी

ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो बल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नान ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग।

Ananda, Brahmgyani Sukhsai Nivas. Nanak Brahmgyani ka nahi vinash, Brahmgyani Brahm ka veta, Brahmgyani ek sangheta, Brahmgyani kahe hoye chint, Brahmgyani ka nirmal mant, Brahmgyani jis kare pravya, Brahmgyani ka vad pratap. Brahmgyani ka dars vad bhagi paye, Brahmgyani ko bal mal jaye, Brahmgyani ko khoje maheshwar, Nanak Brahmgyani ya parmeshwar. ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा देश, ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाए आखर, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकर, ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन मखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात, ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार. ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सत जीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सबे ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल कार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा, ब्रह्मज्ञानी बनी नानक, ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी श्लोक, उदारे जो अंतरनाम सर्व में पेखे भगवान, निमक निमक ठाकर नमस्कारे, नानको अपरस सकल निस्तारे, अष्टपदी मिथ्या नाही, रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, परतरिया रूप न पेखे नेत्र, सादगी टैल संत संगेत, करन न सुने काऊ की निंदा, सबदे जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वास न मनते डरे, इंद्री जित पंच दोग ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस, वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए पिन, कर्म करत होवे न कर्म तिस, वैष्णव का निर्मल धर्म काऊ, फड़की ईशा नहीं वासे, केवल भगत की संग्राचे, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल. आप दृढ़ अवरा नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्का संग, मन दे बिनसे सगला परम कर पूजे, सगल पार ब्रह्म साध संग, पापा मल खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहर करे नित नीत, मन तन अर्पे विश्रम प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को भावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में सो दे, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित कह उपदेश, जग जीवे हर की कदा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नावे, वेद प्राण सिमृत बूझे मूल, सुखम में जाने अस्थूल, चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौं वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे दिस की गत होए, साध संग पावे जन को हे, कर कृपा अंतर उधारे, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारे, सर्व रूप का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम का, जुगत किते ना पाई है धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार मम का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट अर जान, सो दास दरगे परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म हेतावे, जीवन मुख सो गावे, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नान को पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सकले ठाओ, जिस जित कर राखे तैसा तन्नाओ, आपे कर्ण करावण जो प्रभ पावे सोई फुन होग, पसरे हो आप हो अनंत रंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग, जैसी मध्य तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल. श्लोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारावार, नानक रचना प्रवृचि बावध्यान प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट चार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन भरमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी स्रोते,
ਕਈ ਕੋੜ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਕਵਕਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਭੈ ਅਭਾਨੀ, ਕਈ ਕੋੜ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋੜ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋੜ ਪਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ, ਕਈ ਕੋੜ ਪਰਦਰਵ ਕੋਹਿਰੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਪਰਦੂਕ ਨ ਕਰੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਏ, ਕਈ ਕੋੜ ਪਰਦੇਸ਼ ਭਰਮਾਏ, ਜਿਜ ਲਾਵੋ ਤਿੱਤੇ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ, ਕਈ ਕੋੜ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋੜ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋੜ ਪੰਖੀ ਸਰਪੋ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋੜ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ, ਕਈ ਕੋੜ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਦਰ, ਕਈ ਕੋੜ ਦੇਸ ਪੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋੜ ਸੱਜਰ ਸੂਰ ਨਖੱਤਰ, ਕਈ ਕੋੜ ਦੇ ਦਾਨ ਮਿੰਦਰ ਸਿਰ ਛੱਤਰ, ਸਰਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੇ, ਨਾਨ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਰਾਜ ਧਾਮ ਸਾਧ, ਕਈ ਕੋੜ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ, ਕਈ ਕੋੜ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸੰਬੰਧ, ਕਈ ਕੋੜ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋੜ ਕੀਏ ਚਿਰਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਜਗ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਈ ਕੋੜ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਸ, ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕਿਆ ਬਲਿਪਤ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋੜ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋੜ ਨਰਕ ਸੁਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋੜ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਬੈਠਤੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋੜ ਘਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋੜ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋੜ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਭੈ ਬੈ ਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋੜ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਾਂਤੇ, ਕਈ ਕੋੜ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋੜ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋੜ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋੜ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੋਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਵੋ ਭਾਤ, ਪ੍ਰਭਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋ ਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ, ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ,

मृत को जीव आलन हार भूखे को देवते आधार सर्वदान जाकी दृष्टि माए पूर्व लिखे का लेना पाए सबके तिसका एक सबके तिसका हो करने जो जो तिसमें दूसर हुआ न हो जाप जन सहसा दिन रैणी सबते निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नान सोजन निर्मल दिया जाके मन गुर की प्रती तिस जन आवे हर पव चीत भागत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय को होए सच करनी सदा की रहे सच हृदय सतमुख है सच ही सचाकार सच वर्ते सचा पसार

सारे पुरिया सब भवन नाव के संग उतरे संसार बनम। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नान चौथे परम पद में सो जन गद पाए। रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सजा की बाणी सत पुरख समा इस माणी। सात कर्म जाके रचना सात मूल सात सात उत्पाद सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रकाश सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाए सत वचन साधु उपदेश सत्य जन जाके हृदय प्रवेश। सात निर्द बुझे जे को नाम जब ताकी का तो है आप सत किया सब साते आपे जाने अपनी मेहत का इसके शिष्य सो करने हार अब न बूझ करते विचार करते कीमत न जाने किया नान जो तुझ भावे सो वर्तिया। विस्मन विस्मय विस्मार जिन बुझा तया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे हुए दाते दू कट नार जाके संग तेरे संसार जन का से उसोड़ भागी जन के संग एक लव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पै सच नानक होसी पै सच अस्पदी। चारण सात सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखण हार नाम सत सत ध्यावण हार आप सत सत सवधारी आपे गुणे आपे गुणकारी। शाब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जल सुनता पूजन हार को सत सब होए नानन सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया कर्ण करावण तिन मूल पछानिया जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन बटाया। पैते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना बस्त माए ले बस्त कटाए ताको पिन न कहना जाए बुझे बुझणार विवेक नारायण मिले नानकेक। ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सा पुजारी ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रपालना हरा सेवक की राखे ननकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे। अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात राखे दागी अदमित को नलाके प्रभ के सेवक को नाम पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैदिस प्रटायम। निकी कीरी में कल रखे पद्म करे लश्कर को लखे इसका शासन काट दे आप ताको रख देख रात मानस जतन करत बात इसके करत बिरथे जात मारे ना रखे अवन को सब जिया का रखा सोए।

शरण सरसुख भावे, तिसके दर सब भाव मिटावे, अवर सियान सगली छाड़, ते जन की तू सेवा ला गया, उन जान न हो भी तेरा नान, ते जन के पूजो सद बैरा श्लोक, सत पुरख जन जाने सतगुर तिसका नाम, तिसके संग से उतरे नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिक्की करे प्रतिपाल, सेवको गुरु सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मल हे, गुरु बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिक्के बंधन काटे, गुर का सिख बिकार ते हटे, सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख बट बागी है, सतगुर सिखा हलत पल सुवारे, नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमारे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आग्या मन में सहे, आप सो कर कृष्ण अंजनावे, हर नाम हृदय सत्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रा सेवा करत हो इन्हें कामी, तिसको उत्प्राप स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्व गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाव अन गुर को बल जाओ, सर्वधान जी का दाता।

जय आप रचे हो प्रपंच का हार तय गुण में कीनो विस्तार पापुन तय पै कावत को नरको स्वरूप मंचावत आल जाल माय जंजाल हमे मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान आनक प्रकार की व्याख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक के जय अवगत भगत तह आप जय पसरे पसार संत प्रताप दो पाका पे धनी उनकी शोभा बनी

माई जेहो जनाया का नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जेत पावा विण पाने के नाए करी जेते सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिला लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जुग चारे अरजा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानी आए नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाई कै जस कर जगले जे तिस नदर ना आवै तां वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत आ गुण दे तेहा कोय न सुजै जे तिस गुण कोय करै सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवल आकाश

सुनै सरा गुणा के गा सुनै से पीर पात सा सुनै अंदे पावे राह सुनै हाथ वे असगा

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंग रनमुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असं

असंख कुड़े यार कुड़े फेरा है, असंख मिले सुमाल पाख खाए, असंख निंद से करे पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक बार।

असंकाशर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हें लिखे ते सिर नाए जे फरमाए तिव ते पाए।

निरंकार तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर तंदे पानी धोता तो उतरद के

तीर्थ तप दया दत दान देखो पावै तिलका मान सुनया मनया मन किता पाओ अंतर्गत तीर्थ मल नाओ।

नको जा करता सिरटी को साजे या पहचाना सोई किव करे आखा किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानके आखन सबको आखा एक दो एक सियाना वड्डा साहे वड्डी नाई किता जाका होवे

अमल आवे अमल्ला जाए अमल पाए अमल्ला समाए अमल तरम अमल दीबाण अमल तल अमल परवान अमल बख्शीस अमल निशान अमल करम अमल प्रमाण अमल अमल्ला क्या न जाए आख आख रहे लिवलाए।

आसन लोए लोए पंडार जोग च पाया सो एका वार कर कर वेख्या सृजनहार नानक सच्चे की साची कार

कवि लख लगेड़ाया किया एक नाम जगदीश एतरा है पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्लाया कासके केटाया रेस नानक नदरे पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस

इनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होय विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथ सुन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कछ बकाई उत पाए नान गया जाप जाए धर्म खंड का हो धर्म ज्ञान खंड का या को कर्म केते पौन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काड़त कड़िया रूप रंग के वेश केते करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश

वेश केते देव दान मन केते केते रतन समंद केत्या खाणी केत्या बाणी केते पा नरेंद केत्या श्रुति सेवा केते नानक अंत नायंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाल बनोद कोड आनंद

साहिब जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, चक्र चिहन अर बरन जात अर पात निहंज, रूप रंग अरे पे को कह ना सकत कह, अचल मोर धन भव प्रकाश संतोष के जय, कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गणिजय, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत, तव सर्व नाम कथे कवन, कर्म नाम बरनत सुमत, पुजंग प्रजा छंद। नमस्तम काले, नमस्तम कृपाले, नमस्तम रूपे, नमस्तम नूपे, नमस्तम भिखे, नमस्तम लिखे, नमस्तम काये, नमस्तम जाये, नमस्तम गंजे, नमस्तम पंजे, नमस्तम नामे, नमस्तम ठामे, नमस्तं कर्म नमस्तं धर्म नमस्तं नाम नमस्तं धाम नमस्तं जीते नमस्तं पीते नमस्तं बाहे नमस्तं डाहे नमस्तं नीले नमस्तं नादे नमस्तं शेदे नमस्तं गादे, नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं उधारे नमस्तं पारे नमस्तं सुएके नमस्तं अनेके नमस्तं भूते नमस्तं जुपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भरमे, नमस्त निर्देशे नमस्त निर्भेशे नमस्त निर्नामे नमस्त निर्कामे नमस्त निर्दाते नमस्त निर्घाते नमस्त निर्दूते नमस्त भूते नमस्त लोके नमस्त शोके नमस्त निर्तापे नमस्त तापे, नमस्त त्रमाने नमस्त निधाने नमस्त गाहे नमस्त बाहे नमस्त त्रिवर्गे नमस्त सर्गे नमस्त प्रभोगे नमस्त संयोगे नमस्त अरंगे नमस्त भंगे, नमस्त गम्य नमस्त सत रम्य नमस्त जलाश्रय नमस्त नराश्रय नमस्त जाते नमस्त पाते नमस्त मजवे नमस्त सत अजवे, आदेश संदेशे नमस्त भेसे नमस्त नृदामे नमस्त निर्वामे, नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले, नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले, नमस्त सत देवे नमस्तम भेवे नमस्तम जन्मे नमस्तम सो बनवे, नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे, नमो काल काले नमस्त सत दयाले, नमस्तम भरने नमस्तम मरने नमस्तम जरार नमस्तम कृतार, नमो सर्व तंदे नमो सत वंदे, नमस्त नृसाके नमस्त निर्वाके नमस्त रहीमे नमस्त करीमे नमस्त अनंते नमस्त महंते नमस्त सतरागे नमस्त सुहागे, नमो सर्व सोख नमो सर्व पोख नमो सर्व दया करता नमो सर्व हरता नमो जो जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले, चाचरी संत प्रसाद अरूप है अनूप है जू है पू है लेख है भेख है नाम है काम है देह है बे है जीत है पीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है अनिल है नाद है जय है जाद है जन्म है वर्ण है भूत है भरण है गंज है वंज है जूझ है जंज है मीक है रफीक है दंध है बंध है निर्भूज है सूज है काल है जाल है, अल्लाह है अजा है आनंद है महंत है अली कह नरसी कह नलंब है सम है गम है तै लोक है शोक है कर्म है भरम है जीत है पीत है बाह है गा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रजा छंद, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे भेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे,

सर्व जीत नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञान नमो परमतान नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कीर्तन नमो सर्व रंगे त्रिवंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे खिजे पिजे समस्त प्रसिजे कृपालन स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदनवासी चर प्रसन्न त्वय प्रसाद आमृत करमे बिरत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खल धर्म लख कर्म सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व पाने सर्व माने सर्व प्राण सर्व त्राण सर्व भुक्ता सर्व जुक्ता सर्व देवं सर्व बेवं सर्व काले सर्व पाले रुहाल शंदो प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मान त्रिमान देव बेव आदधार सर्व पाल सर्व काल सर्व कोपन काल जतर ततर विराजी अवधूत रूप साल नाम ठाम नजात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख धार मूर्त जोन आद सेख देश और न पे जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा साव फैले और राग नाम काम विहीन बेगता मुन जाहे सर्व मानस वतर मानस देव मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को ब्रेक

चक्र बकर बिरे चतर चक मानी प्रतीन लोक चौदह के विखे जग जापी जय जाप देवनाथ मूर्था प्यो सब थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विसर्च्यो स्वयं भोगन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म ताम सो परम रत भूत लख पेश अंग राग नारंग जाके जात पात नानाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकदाय काम आप रूप अमीक अनुस्तद एक पुरख वधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंग

श्री शंतय प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निन्नामे अकामे भजंग प्रयाचंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र धान्य चतर चक्र जाने चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चात्री छंद न सदरे न मित्रे न परम न मित्रे न कर्म न काय जन्म अजाये

करने के विभूत करने के राज प्रवाह है के धर्म तुझा है के शोक भरने के सर्वा भरने के जगत कीर्ति है के शत्रन क्षत्रि है के ब्रह्म स्वरूपे के अनुभव अनुपे के आद अधेव के आप अपेव के चित्र महीने के अधीन के रोजी रजा के रही में रहा के पाक भी है वें के गै बुल गै वें के अब बुल गुना है के शान शाह के कारण को निंद है के रोजी दहन है के राज कर रही में के कर्म करी में के श्रवण कली है के श्रवण दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोके के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानिए सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र भाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के सर्व कलिमे के परम पहिमे के अकल अलामे के साहिब कुलामे के हुसन वजू है तमाम रजू है हम सलामे से लिखत मुदामे गनी मुल शिकिश्ते गरीब अल परस्त

बंद हैं, भक्त हैं, बरकत हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निश्चिंत हैं, सुनिंत हैं, लिख हैं, देख हैं, लीख हैं, भीख हैं, डा हैं, गा हैं, संभ हैं, गम हैं, अनिल हैं, नाद हैं, आनित हैं, सुनित हैं, याद हैं, जाद हैं, चर प्रसन्न तो प्रसाद, सर्वहंता सरंगंता संख्याता सर्ण।

समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के काम करीम है के राज करीम है के रोजी दहन है के राज कर हिंद है करीम उल कमाल है के हुसन जमाल है नीम उल खराज है करीम उल निवाज है हरीफ उल शकिन है रास उल बकिन है कलंकन वनास है समस्त उल निवास है गंजल गनीम है रजाए के रहीम है समस्त उल जबा है के साहिब करा है के नरकम प्रणास है बहस तो निवास है के हसर उल गवन है मीस उल रोन है दमाल तमीज है समस्त उल हदीस है परम परमीस है समस्त उल हदीस है देश उल लेख है हमेश उल भेख है जमील जमा है मी कलमा है करीम उल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलम प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत

सासे नमो बाबंगे भंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी कामे कश्री छंद अजय है लय है बे है अभय है बह है भू है जू है नास है कासे

श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे वाच बेनती चौपाई अमरी करो आदे रचा पूनो हे चित की इच्छा तब चन मारे हमारा अपना जान करो दोबारा। हमरे दुष्सवे तुम हमरे दुष्सवे तुम गावो आपा दे मोहे बचावो सुखी वसे मोर परवारा सेवक सख सवे करतारा मोर शानिज कर दे कर ये सब वैरन को आसंगर ये पूर्ण हे हमारी आशा तोर बन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याऊं जो भर जाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारिये आबा दे मुझे वरिय मन काल का त्रास निवरिय जो सदा हमारे पच्छा श्रीयत जो करे और अच्छा राख लियो मोहे राखना रे साहेब संत साहे प्यारे दीन बंद के अंता तुम हो पुरी स्कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जीव अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जमन काल सगल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय मारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आद अंत कह अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब कुन सुन दियो शतरन को पल मोहद कियो कटकर के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दिशकर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा जाब आ कर दो कबू तुम मैं मिल दे तर सबू जेते बदन से सब तारे आपा।

श्री सिद्ध दिखाए चंभवा जीवा सुरु सुअंभवा वृक्षा मेरी तुम करो सिखो भार सिख संग करो दुष्ट उड़ो तत्पाता सकल मलेश करोड़ काता जे अस्तुता सन्नी परे तिनके दुष्ट दुख वह मरे पुरख जीवन पव परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निक नये है रक्षा हुए था सकाल दुष्ट रिष्ट ने तत्काल कृपा दृष्ट तन जाय न हरियो ताके ताव तन कुम हरियो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हो दुशाह सकन कोई एक बार जिन तुम्हें समारा काल पास दे दाय उबारा

कृपा करी अंबर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता किलबिक सकल देख को अर्ता दुष्ट हो किन कोशा करता श्री तुझा भय दे अल्लाह पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वांछित बल पावे सोई दुख नंद से व्याप्त कोई एड़ेल सुने गुंग जो जाय सरस ना पावे ही सुने मूर्छित लाए चतुर दाय आवे ही।

पात्र सुधी अष्टमी रविवारा तीर स्तद्रव कं सुधारा सोइय पाएंगे जबते तुमरे तबते को आंख तेरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सुवैभव भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना क्यों सब तुए बखाने हो। दोहरा सगल द्वार को छड़ के गयो तुहारो द्वार। बाएंगे कीला जस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया। सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन प्रवार। परियां शब्द गावणे आईयां शब्द ओतंगावो हरी केरा मन जनी वसाया।

हे कर्म कमाया तू श्री राजा तू जग में आया जिन तेरा वचन उचिया सर सो हर मन नाम साया गुरु प्रसादी हर मन मसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानके श्री प्रवान हो अजन सतगुरु सुन जित लाया ए नेत्रो मेरे हर तुम्हें जो धरी हर बिन अब न देखो कोई हर बिन अब न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वे संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुरु प्रसादी बुझिया जा वेखा एक है हर बिन अब न कोई कहे नानके नेत्र अंत से सतगुर मिली है देव दृष्ट हो सरवणो मेरे हो साचे सुनने नू बटाए साचे सुनने नू बटाए श्री लाए सुनो सत बाणी जे सुने मंतन हरिया हो आरसना रसमाणी साचे लख बडाणी दागी गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पित्र हो वो साचे सुनने नू बटाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा अपन मजाय वजाय वाजा पौन नौ द्वारे परड़ किए दसमां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसमां द्वार दिखाया

जानी परो एक की शरना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु प्यारी सात संगत सतगुरां दी पार बख्शिश रहमत दा सदका अमृत वेले दा सुहावना समां प्राप्त होया है। जो भी संगत आए ने सतगुरु रहमत करन आप सारे दी हाजरी दर प्रवान करन दरों करो नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शन। सो आओ ऐतवार सवेर दा सुहावना समां सतगुरां दे चरणां च बैठ करके गुरु का जस सरवण करिए। सत्कार योग भाई साहब भाई जसपाल सिंह जी पौंटा साहिब वालिया का जथा जी नूं श्री आसा जगा का कीर्तन सरवण करवाएगा। उस तो उपरंत सत्कार योग भाई गुरमेल सिंह जी कनेडा वाले कथावाचक उन्हां पासों अज आपां अज का जो महान हुक्म है साहिबां का उस दी विचार सरवण करनी है। उपरंत अखंड पाठां दे भोग पाए जावणगे ते दिन दा दीवान शुरू होवेगा। सो बेनती है सारे ही माई पाए दे चानन जो भी रेडियो राही सरवण कर रहे हो खास करके बेरिए दीआं संगतां नूं वध चढ़ के आ के गुरु के चरणां विच हाजरी लवाओ गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करो। आओ कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: बड़े बड़े छत्र धारी, छत्र की छाया कई कोस लौ चलत है। बड़े बड़े राजन के दाब तो फेरत देश, बड़े बड़े भूपण के द्रप को दलत है। मान से महीप और दलीप के से छत्र धारी, बड़ो अभिमान पुंज दंड को करत है। दारा से दली सिर द्रजोदन से मान तारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। कलगीधर पातशाह जी कहते बड़े बड़े जोगी जति सिद्ध साधक होए ने, द्रजोदन वर्गे होए ने, दारे उसको वर्गे होए ने, चले गए ने ते गा भी जाते रहे। इस करके गरीब नवाज जी कहते दिन ते पैर, पैर ते घड़िया,
1: घड़िया तो अर्थ आरंभ हो जाता जे,
0: घड़िया तो पैर बन जाते ने ते पैरां तो दिन बन जाते ने। आव घट ता जेड़ी उमरा है गुरु खालसा जी, वह घटद्या घटद्या घट जाती है। संसार वाले झात मारीए, कोई भी ऐसी संसार विच वस्तु नहीं, आखो गज के सतनाम श्री, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जेड़ी ना घटदी होवे। इत्थों तक आकाश घटदा है, धरती घटदी है, सूरज घटदा है, चंद्रमा घटदा है, नेत्रां दी जोत घटदी है, कन्ना दी आवाज घटदी है, सोना चांदी घटदा है, माता पिता दा स्नेह घटदा है, पति पत्नी दा स्नेह भी घटद्या घटद्या सारा ही कुछ घट जांदा ते उमरा भी घट जांदी है। मेरे गरीब निवाज पंचम गुरुदेव महाराज जी दे अमृत बाचा ने साहब जी कहिंदे कटंत रूपंग, तुसी सियाणे बैठे हो, अज घट दी गल चली है तां बचपन च रूप जिहड़ा हुंदा बंदे दा होर हुंदा, बड़ा कोमल जिहा हुंदा है, बड़ा मुलायम हुंदा है, बिल्कुल मुलायम हुंदा है बिल्कुल। तां थोड़ा जिहा दसां क सालां दा होवे ते उह कोमलता घट जांदी है जी, दसां तों वीहां सालां च होर कोमलता घट जांदी है, वीहां तों तीहां च होर घट जांदी है। दस बालतन बीस रवण तीसा का सुंदर कहावै, ते जदों चालियां दा हो जांदा होर घट जांदी है। फिर मैनूं माफ करिओ, जदों रूप होर घट जांदा है ना, फिर बंदा कहिंदा वाहिगुरु मैं घटन नहीं देना, मैं घटन नहीं देना, फिर इन्ने पैसे बर्बाद कर देने ने, फरा फरा के मशीना फेस ते उहदी डंड ला देनी है। गल्लां सच्चियां ने, कहणियां भी औखियां ने ते सुणनियां भी औखियां हुंदियां ने, ते घटदिआं घटदिआं जिन्ना मर्जी जतन कर लवे। तां गरीब नवाज कहिंदे जे उमरा घट रही है ते रूप भी ते घटी जाना है ना, तू जिन्ना मर्जी कर ला, अज होर कल होर, घटंत रूपंग, क्योंकि बाणी दे बोलां नूं कौन झुठलावेगा, मेरे वर्गे बोलां दे बंदे दे तर्क आ जावेगी। घटंत रूपंग घटंत दीपंग, दीप नाम है अखां दा, अखां दी जोत भी घटदी है, दो दीवे जगदे ने, दो दीवी बलंदे आ, मलक बैठा आए, घट लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए, अथवा सत दीप भी जड़े वह भी घटते जाते हैं। घटंत रूपं घटंत दीपं घटंत रव ससियर निखियातर गगनंग, रव ससियर, रव मींज है सूरज, सूरज चढ़िया सी, थोड़ा चढ़द्या चढ़द्या जवानी आ जानी, घटद्या घटद्या शामा नूं बिल्कुल ही घट जाना जे, फिर जदों शामा पै गई रात पै गई जी, फिर तारे चढ़ जाने ने, बड़े जगमग टमकाने ने, जगमग जगमग हो ही होनी है जी, लाइटां जग रही ने, पर सवेर होंदिया होंदिया होंदिया सारे घटद्या घटद्या घट ही जाने ने, चंद्रमा घटदा जांदा है। घटंत रूपं घटंत दीपं घटंत रव ससियर नखियत्र गगनंग, घटंत वसुदा गिर तर से खंडंग, वसुदा नाम धरती है, खंड है, सब कुछ घट जाण वाला है। घटंत वसुदा गिर, गिर ना पहाड़ भी घटदे ने, वसुदा गिर तर खंडंग, घटंत ललना सुत भरात ही तंग, ललना नाम है घरवाली, घरवाले का एक दिन जांदिया जांदिया प्यार भी घट जाता है, घर की नार उर है तन लागी, वो तो भूत भूत कर भागी, घट गया ना, घटद्या घटद्या घट जाता है। कणक सोना बंदा खरीदा कहिंदा जी तीन तोले है, तो उन्होंने साल बाद तोल के वेख लियो घटदा घटदा, प्या प्या ही घट जाता, कहिंदे सब कुछ घट जाण वाला है। घटंत ललना सुत, सुत नाम है पुत्र दा, सारे आपां धीआं पुत्रां वाले आ, जदों पुत्र बचपन हुंदा है मां बाप नाल कुछ प्यार वखरा जिहा हुंदा है, बहुत ज्यादा प्यार हुंदा है, जीदा नहीं है ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਘਟੇ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁੱਤ, ਅਨਕ ਸੁੱਤਨ ਪੈਣਾ ਤੈਸੋ ਹੋਏ ਆਵਈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਚਾਹਤ ਉਹ ਸੁੱਤਨ ਕੋ, ਤੈਸੇ ਨਾ ਸੁੱਤਨ ਚੇਤ ਚਿੱਤ ਚਾਹ ਉਪਜਾਵਈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁੱਤ ਤੈਸੇ ਨਿਪ ਜਾਵਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੱਲੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਤਾ ਮਾਂ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਘਟਦਿਆਂ ਘਟਦਿਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਟੰਤ ਬਸਦਾ ਗਿਰ ਤਰਸੇ ਖੰਡਨ, ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ ਸੁੱਤ ਭਰਾਤ ਹੀਤੰਗ, ਘਟੰਤ ਕਨਕ ਮਾਇਆ ਸਵੈ ਰੂਪੰਗ, ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਟਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁੱਤ, ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਟਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਟਣੀ, ਨਾਮ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਚਨ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਰੀਬ ਬਨਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਚਾ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤਨਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਆਦ ਬਿਹਾਤ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵ ਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲਾ ਕੇ ਨੈ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ, ਆਜੂ ਸਮਝ ਕਸ ਬਿਗਰਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੈ ਨਿਰ ਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ, ਅਜੂ ਸਮਝ। ਭਈ ਅਜੇ ਸਮਝ ਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਿਗੜਿਆਮ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ, ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਸ ਬਚਣ ਤੇ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜੇ ਤ੍ਰੇੜ ਆਈ ਦੇ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਦਿਆਂ ਸਿਮਦਿਆਂ ਸਿਮਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜੇ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬਹੁਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ

राम नाम तन बिनस तन बिनस जमस्यो परे काम। जदों शरीर बिनस गया ते जमा नाल काम पै जाना ही, ओ काम ना पवे। उस काम तो बचन वास्ते पहला चारा कर, पहला गुरु गुरु जप, मन कहां बसारे राम नाम।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठ नंदन प्रथम राग पैरो वै करहि पंच राग ने संग चरहि।

एक वार जो तद पावै साई भले कार तु सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग

श्रुति ज्ञान विचार जोर न जुगति छुटा संसार जैसा जुर कर वेख सोए नानक उत्तम नीच न कोए राति रुते थिति वार पवन पणि अग्नि पाताल तिसवे धरती ताप रखे धर्मसाल तिसवे जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मे कर्मे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथ सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाए ओथ पाए नान गया जापै जाए धर्म खा

मैं काड़त कड़िया रूप रंग के वेस के त्या करम भूमि मेर केते केते धूप देस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया काणी केतिया बाणी केते पा नरेंद्र केतिया सुर

ताकि अगला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुर तुमत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सदा के सुद कर्म खंड के बाणी जोर तिथे हो न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया परपूर तिथे सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाए ना उमर न ठगे जाए जिनके राम वस मन माहे तिथे भगत सको करन सच्चा मन सोए सच खंड वस निरंकार कर वेख नदन निहाल तिथे

पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याइये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पाम है मेरे मना।

सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहि मिटाओ। सिमरना किस नूं है? सिमरो व्यास दशंबर एक, वो इको ही जो सारी सृष्टि का मालक वाहेगुरु। सतगुर गुरबाणी दसते, सतगुर गुर पूरा अरादो, उन्हों सतगुरु भी किया, पूरा गुरु भी किया। जो तुसी इतना मन नूं जोड़ के जपदे, उन्हों अराधना लिखा कि सतगुर गुर पूरा अरादो हो सब किल विख पाप गवाया। किल विख कहता पाप कह दिता, जिहड़े विचार जिन्हों कल कलेश किया सुखमणी साहब च, ये सारे डिलीट हो जाएंगे मन चो, तो वाहेगुरु वस जाएगा। तो जिन्हां दे वाहेगुरु वस गया वह सुखी क्यों ना होणगे मन च? हिरदे नाम वसाए हो, घर बैठे गुरु त्याए। ये सतगुरु बख्शिश करते ने। हुण तुसी चेक कर लिया होना सारे ने, भावें 10 मिनट ही सिमरन किया, अद्धी घड़ी भी नहीं किया। अजे कबीर साहब ने कहा सी ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी होते 6 मिनट, 6 मिनट तो तुसी ज्यादा किया, तो हुणे ही सुख महसूस हो रहा। सहज आनंद होवा वडभागी, मन हर हर मीठा लाया। जिहड़ा बोलण नूं दिल नहीं करदा हुण मीठा लगन लग पिया, हर हर वाहिगुरु वाहिगुरु। ये तुसी चल पे इस मार्ग दे, इत्थों शुरुआत हुंदी है बंदगी दी। सुख आउंदा है क्योंकि नाम तो बिना होर कोई सुख नहीं है। डिठा सब संसार सुख ना नाम। आपां पहला बेनती कीती सी कि दो सुख ने, एक तन दा है एक मन दा है। तन दे सुख दुनियावी पदार्थ ने, वह दुनियावी धन इकट्ठा करोगे तो मिलणगे, पर उन्हां च मन दा सुख नहीं मिलदा। जिन्हें मर्जी पदार्थ इकट्ठे, कोई किन्ना अमीर हो जाए, उन्हूं मन दा सुख नहीं मिलदा। मन दा सुख गुरबाणी च इहो सिमर ने दस्सिया, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश। अज तुसी हुक्मनामा साहब सारे ने पढ़िया, उत्थे कबीर साहब दे बचन ने, कहिंदे तुसी कदी वेख्या नहीं गा